भगवान का घर है, हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरी तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब सलाम। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है, भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों, आज रविवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए।

सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। रविवार का दिन है, एतवार का दिन, सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर भजन की ओर है।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है। ये सुंदर सा भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS की जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश

अभी से वामेव। चले एक भजन पेश किया जा रहा है फिल्म बजरंग बली का, और आप सुनेंगे सोनू निगम की आवाज में ये सुंदर सा भजन जो पेश किया जा रहा है।

सोनू निगम की आवाज में पेश की गई है। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-22-66-66-11। गुरमीत और मीना की आवाज में एक सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है। गुरमीत और मीना की आवाज में ये सुंदर भजन बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में चले मिलकर सुनते हैं ये सुंदर सा भजन।

सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हरिओम शरण और नंदनी शरण जी की आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

रंग जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। एक भजन की ओर हम आपको ले चलेंगे चित्रा सिंह की आवाज में जो पेश किया जा रहा है, और इस भजन के बाद प्रोग्राम में आरती भजन पेश किया जाएगी।

सुंदर और सुंदर भजन चित्रा सिंह की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं खासतौर पर आरती भजन की ओर। और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

सुन वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अरसों। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज जबकि रविवार का दिन है, 13 तारीख सितंबर का प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। घड़ी की ओर देखा जाए 9 बजकर प्रोग्राम में 4 मिनट व्यतीत हो चुका है।

दोपहर के वक्त या तो शाम के वक्त में जोर जोर से बारिश होने वाले है। आज का मौसम बारिश का मौसम भी होगा और टेम्परेचर आज का तकरीबन 20 डिग्री होने वाले है। तो रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। हमारी सभी सुन वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, सभी को अनहिल खुद मूर्ख गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सभी सुनने वालों जो देश विदेश में भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, उन सभी को भी स्वागत किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का ऐप नंबर 03-226-66-11। अपना मोबाइल टेलीफोन पर आप जाइए रेडियो SBS का वेबसाइट पर और उसी वेबसाइट के जरिए भी आप मेल कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन, मोबाइल फोन, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और उसी वेबसाइट पर मौसमी समाचार और आपका रोजाना का दाह होरोस्कोप ज्योतिष शास्त्र भी होता है।

गर्मा गर्म कॉफी चाय की ओर जो आप सभी के लिए बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में पहला पुरानी ये फिल्म का गीत की ओर मोहम्मद रफी की आवाज में गाना जो पेश किया जा रहा है।

इसी तरह से मोहम्मद रफी की आवाज में गाना भी आपने सुना, फिल्म का नाम था हम साया। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और स्टूडियो के अंदर तार आते रहते हैं सुनने वालों, आप सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। मुकेश एन लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मालूम है कि कुछ और लोग स्टूडियो की ओर तार किया है, तार कर रहे थे, लेकिन इतना ढेर सा तार यहाँ पर अंदर आते हैं तो आप बाद में फिर कोशिश कीजिए स्टूडियो की ओर तार करने के लिए। हमारा भाई मिका सुक्खू, हाँ, हमारा सूरीनाम देश का मशहूर गाने वाला द मैन विद गोल्डन वॉइस मिका सुक्खू जी हमारा प्रोग्राम भी इस वक्त सुनते हैं और एक बड़ी ही खूबसूरत गाना रफी साहब की आवाज में मांग किया है। फिल्म का नाम आरजू, तो चले मिलकर

में ये फिल्म आरजू, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। 1965 का फिल्म, 1965 का खास फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में, और आमस्टरडम शहर का रहने वाला मीका सुखू जी गाना बस मांग की आज की प्रोग्राम में जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। भाई मीका सुखू, आपको शुभ दिन पेश किया जा रहा है, आपके तार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद, और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। फिर मिनटन फोर हालफ तीन स्टूडियो तय हो चुका है, पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11, इसी तार की नंबर पर भी आप ऐप कर सकते हैं रेडियो SBS का ऐप पर। देखा जाए बहुत सी सुनने वालों बस तार कर रहे हैं, गाना को मांग कर रहे हैं, तो तुरंत सुनने वालों की मांगी हुई गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। डेनहाग शहर की रहने वाली है, डेनहाग शहर की रहने वाली कमला, कमला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है लता जी की आवाज में।

लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। दनहल शहर की रहने वाली कमला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहेंगे। सुनने वालों अभी 11 बजे से आप दरियाफ्त कर सकते हैं सुपरमार्केट को दवा के पास में दुकान जो हर रविवार खुला रहता है सुबह 11 बजे से लेकर के और शाम 6 बजे तक। कोई भी सामान आप खरीदना चाहेंगे तो अभी 11 बजे से आप दरियाफ्त कर सकते हैं प्रिंस बैरनाट लाइन नंबर 4-5 तक उत्तराखंड सोलन में जो है। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और वो भी गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। आज जबकि रविवार का दिन है 13 तारीख सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सुनने वालों आपको मालूम होना चाहिए कि रविवार 15 तारीख नवंबर उदित नारायण और आदित्य नारायण बाप और बेटे का ग्रेट एक बड़ी ही खूबसूरत कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं रोटरडम आहोई में RTM स्टेज में। अपना टिकट जरूर जल्द से जल्द आप जाकर खरीदिए। इस कॉन्सर्ट का टिकट काफी जोर तोर से बिक रहा है। आई स्ट्रेप टिकट्स.com वेबसाइट पर आप जाकर अपना टिकट को आप खरीद सकते

काफी जोर तोर से बिक रहा है। उदित नारायण और उनका बेटा टिटिया नारायण का लाइव कॉन्सर्ट जो पेश होने वाले है सोमवार 15 नवंबर रोटरडम आहोई RTM स्टेज में। हर एक इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है रागा इवेंट्स वेबसाइट पर। स्टापोर शहर में इस वक्त हमारा प्रोग्राम शांति मताओ भी सुनते हैं। शांति मताओ आपको भी शुभ दिन, पूरा परिवार को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और आपने एक खास गाना मांग किया है मोहम्मद रफी की आवाज में सभी और सभी सुनने वालों के लिए। तो चले मिलकर सुनते हैं स्थापोर शहर के रहने वाली शांति मताओ की मांगी हुई गाना जो आप सभी सुनने वालों के लिए पेश किया जा रहा है।

मोहम्मद रफी की आवाज में मेरी दोस्ती मेरा प्यार। स्थापौर शहर की रहने वाली शांति मताओ का खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई और वो भी पेश हुआ है आप सभी सुनने वालों के लिए। ये गाना पेश किया आज की प्रोग्राम में स्थापौर शहर की रहने वाली शांति मताओ ने। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। अब की बार गाना पेश होगा फिल्म का नाम तीसरी मंजिल। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में गाना को मांग करने वाली रोटरडम शहर की रहने वाली सबीना खास गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी और सभी सुनने वालों के लिए बस पेश किया जा रहा है। सबीना छोटे खान रोटरडम शहर से ये गाना को मांग किया है।

अर्शद भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में गाना पेश की गई फिल्म तीसरी मंजिल ओ मेरे सोना। रोटरडम शहर की रहने वाली सबीना छोटे खान ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है इसी तरह से बस सुनते ही रहना। एक बार फिर से रोटरडम शहर की ओर हम आपको ले चलते हैं और वहां पर भी हमारा प्रोग्राम हमेशा भी सुनते हैं रशीद पीरू भी हमारा प्रोग्राम आज भी और हमेशा भी सुनते हैं। और आज के प्रोग्राम में मोहम्मद रफी की आवाज में एक गाना मांग किया है, फिल्म का नाम एक सपेरा एक लुटेरा। तो चले रशीद पीरू का खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में सुनते हैं।

0: रे।
1: और रेडियो SBS की जरिए फिल्म एक सपेरा एक लुटेरा, उसी फिल्म का गाना बस पेश की गई मोहम्मद रफी की आवाज में। और रोटरडम शहर का रहने वाला रशीद पीरू के मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रशीद, आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। गाना जो आपकी बार प्रोग्राम में पेश होगा, फिल्म का नाम तकदीर, मोहम्मद रफी की आवाज में। जब जब बाहर आए फूल मुस्कुराए मुझे तुम याद आए। उत्रेख लाइट सराइन गिरधारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

0: तकदीर फिल्म का गीत पेश की गई मोहम्मद रफी की आवाज में। ये गाना भी आपने सुना। यूट्रेख्त शहर का रहने वाला, यूट्रेख्त लाइडसराइन गिरधारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी, राजन गिरधारी का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। राजन गिरधारी, भाई राजन गिरधारी आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सुनने वालों, हम आपको ले चलेंगे प्रोग्राम में यहाँ से खबरें की ओर। रिक्लाम, न्यूज, मौसमी समाचार और फरकीर्स इन्फॉर्मेशन जो पेश किया जाएगी आप सभी सुनने वालों की सेवा में। उसके बाद और भी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस पेश किया जाएगी।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja samaan kleine en grote murti. Supermarkt Toko de Waag, Prins Bernhardplein.

रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं। सुनने वालों, अगर आप गाना मांग करना चाहेंगे तो इस प्रोग्राम में सिर्फ पुरानी नख्मे आप मांग कर सकते हैं, इसलिए कि पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जो पेश किया जा रहा है। इस तरह से ये गाना जो अभी आप सुनेंगे, फिल्म का नाम जब जब फूल खिले, लता जी की आवाज में गाना पेश होगा। और मांग करने वाली है रोटरडम नोट की रहने वाली शीला। शीला, ये खास गाना आज की प्रोग्राम में बस मांग किया है।

रोटरडैम नोट की रहने वाली शीला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। 10:00 प्रोग्राम में 6 मिनट वैधित हो चुका है और रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है जिसमें पुरानी फिल्मी गाने आप हर एक के लिए बस पेश किया जा रहा है। अब की बार खीटन शहर की रहने वाली रखीना दाहू का खास मांगे हुए गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। फिल्म पारिंदा आशा भोसले।

पारिंदा फिल्म का नाम आशा भोसले और सुरेश वत्कर की आवाज में गाना बस पेश की गई। खीतन शहर की रहने वाली रखीना दाहू के मांगे हुए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रखीना शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम इसी तरह से जरूर और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611 और रेडियो SBS का एप नंबर बस वही तार का नंबर होते हैं। स्टूडियो का तार का नंबर 030-262-6611। अपना मोबाइल टेलीफोन मोबाइल फोन पर आप जाइए रेडियो SBS का वेबसाइट पर और उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन के जरिए आप रेडियो SBS का ऐप पर ऐप कर सकते हैं और ऐप द्वारा भी तार कर सकते हैं। आइट फिल्म बॉम्बे टू गोवा किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में एक काफी प्यार भरी गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और गाना को मांग करने वाली है रोटरडम शहर की रहने वाली शांता रघु की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है किशोर और लता जी की आवाज में।

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो, और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

रेडियो SBS की जरिए ये खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। और खास तौर पर गाना को मांग करने वाली थी रोटरडम शहर की रहने वाली शांता रघु। शांता रघु की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। काफी प्यार भरी गीत अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई है। शांता आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और इसी तरह से रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो के अंदर काफी लोग बहुत सी सुनने वालों ऐप किया है ऐप द्वारा तार किया है स्टूडियो का टेलीफोन पर भी तार किया है। इट इज हेल एरख द्रुक। हाँ बहुत सी सुनने वालों बस हॉलैंड देश के कोने कोने में दुनिया के कोने कोने में प्रोग्राम को सुनते हैं और स्टूडियो की ओर तार किया है। काफी लोग बहुत सी सुनने वालों गाना नहीं मांग किया है लेकिन ऐप पर अपना अपना रिएक्शंस भी दिया है कि हमेशा और वो भी सालों से रेडियो SBS का ये प्रोग्राम को सुनते हैं। नतुल गुसैन मेर दान एनन फिर तक यार मेट द सेल्फ द नाम SBS संगीत भरी स्टेशन इसी नाम के साथ एनन फिर तक यार मेर दान एनन फिर तक यार रेडियो SBS का प्रोग्राम उत्तर शहर के अंदर में बस पेश किया जा रहा है।

टोफ शहर में हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं। वहीदा अमीर पहली बार हमारा प्रोग्राम में गाना मांग किया है। एंटोफ शहर में रहती है वहीदा अमीर, आपको भी वेलकम कहा जा रहा है। और रेडियो SBS का प्रोग्राम इसी तरह से बस सुनते ही रहना। एक गाना आप सुनना चाहते हैं प्रोग्राम में, फिल्म तकदीर का, मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में, तो चले मिलकर गाना को सुनते हैं। मांग करने वाली है एंटोफ शहर की रहने वाली वहीदा अमीर की मांगी हुई गाना।

डोवर शहर की रहने वाली वहीदा अमीर के मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। शुक्रिया हमारा प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए और रेडियो SBS का प्रोग्राम इसी तरह से जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक खूबसूरत और सुहाना दिन बस पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और बहुत सी सुनने वालों आज रविवार 13 तारीख सितंबर का प्रोग्राम को सुनते हैं। सुनने वालों एक बार फिर से आपको खबर किया जा रहा है, मत भूलना सोमवार 15 नवंबर बाप और बेटे का कमाल आप देखिए लाइव ऑन स्टेज रोटरडम आहोय RTM स्टेज में। उदित नारायण और आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं और अपना टिकट जरूर आप जाकर जल्द से जल्द खरीदिए iStreamTickets.com वेबसाइट पर। उदित नारायण और आदित्य नारायण का शो का कॉन्सर्ट का टिकट काफी जोर तोर से बिक रहा है और जिस तरह से मालूम होते हैं कि जल्द से जल्द इस कॉन्सर्ट का टिकट सब के सब बिक जाएंगे, तो जल्द से जल्द आप भी जाकर अपना टिकट को खरीदिए वेबसाइट iStreamTickets.com सोमवार 15 नवंबर उदित नारायण एंड आदित्य नारायण लाइव इन कॉन्सर्ट।

कौन सेट आपने देखा हाउसफुल के साथ हेलमाल आउट फॉर कोख था ये दोनों शो तो उदित नारायण और आदित्य नारायण का कॉन्सेप्ट सब के सब बिक जाने से पहले अपना टिकट जल्द से जल्द आप जाकर खरीदिए i-ticketspoon.com वेबसाइट पर और मिलकर देखेंगे सोमवार 15 नवंबर उदित नारायण एंड आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट रोटरडम आहोई RTM स्टेज में। हर एक इंफॉर्मेशन रागा इवेंट्स वेबसाइट पर आपको दिया जा रहा है या तो i-ticketspoon.com वेबसाइट पर। हमारा प्रोग्राम इंग्लैंड में यानी कि इंग्लैंड में भी सुनती है नैला, नैला हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं और एक खास गाना आज के ये प्रोग्राम में मांग किया है। फिल्म का नाम अभिमान, लता जी की आवाज में इंग्लैंड की रहने वाली नैला की ये खास मांगी हुई गाना पेश किया जा रहा है।

England, Engeland, Reine Valium. नैला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म अभिमान अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। नैला आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और इंग्लैंड में हमारा प्रोग्राम जरूर और जरूर इसी तरह से सुनते ही रहना। ले चलते हैं आपकी बार जर्मनी डचलैंड की ओर। जेन और मार्सल हमारा प्रोग्राम जो इस वक्त डचलैंड में सुनते हैं और खास तौर पर आज की प्रोग्राम में जेन और मार्सल एक खास गाना मांग किया है। फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी। किशोर कुमार की आवाज में गाना आप सुनेंगे। तो लीजिए डचलैंड के रहने वाले जेन और मार्सल का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। कितने सपने कितने अरमान फ्रॉम द मूवी मेरे जीवन साथी सुन भाई किशोर कुमार।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश की गए, कितने सपने कितने अरमान। डच्लैंड की रहने वाले जेन और मार्सल ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया और इसी तरह से पेश की गए। अंसरा उम्मीद है गाना सुना और बेहद पसंद किया है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सर है 10:00 प्रोग्राम में 9 मिनट व्यतीत हो चुका है, 9 मिनटों ओवर हाल्फ स्टूडियो तैयार हो चुका है। मत भूलना आज रविवार है, 3 बजे से बैठक गाना प्रोग्राम पेश किया जाएगी और तकरीबन 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक कुछ लोकल नख्मे आपके लिए भी पेश किया जाएगी रेडियो SBS की जरिए। उत्तराखंड शहर का रहने वाला श्रीमान किशोर भी तार किया है और एक गाना माइटी मुकेश की आवाज में बस सुनना चाहते हैं।

फिल्म कन्हैया, माइकी मुकेश की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। उत्तराखंड शहर का रहने वाला श्रीमान किशोर का मांगे हुए गाना उस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों हर एक कामों काज के लिए रेडियो वेस्ट में इसका टेलीफोन नंबर है जो 24/7 बार एक बार होता है हर एक कामों काज के लिए 030-265-65-60 और 24 uur per dag Radio SBS का वेबसाइट की जरिए भी आप मेल कर सकते हैं और Radio SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। फरमाइश हुआ सस्ती दामों में आपकी तमाम फरमाइश बस पेश किया जा रहा है 5 यूरो बैर फरमाइश। घर पर कोई भी खुशियां है, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह संस्कार, शादी या बेटी बेटा का मुंडन संस्कार है और आप फरमाइश देना चाहेंगे 5 यूरो पर फरमाइश। और तमाम खबरें तमाम रिक्लाम भी सस्ती दामों में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। रोथडाम शहर में हर वक्त हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और वैसे रोथडाम शहर के अंदर में बहुत सी सुनने वालों होते हैं जो रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। आपको मालूम होना चाहिए प्रोविंसी साउथ होलैंड में हमारा प्रोग्राम डीएबी प्लस रेडियो के जरिए भी पेश किया जा रहा है जिस तरह से हॉलैंडीज के बीच में मिड नीदरलैंड में। तो अपना मोटर घर में अपना घरों में डीएबी प्लस रेडियो के जरिए प्रोविंसी साउथ होलैंड में और मिड नीदरलैंड में आप सुन सकते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए काफी दूर दूर शहरों तक ये प्रोग्राम डीएबी प्लस रेडियो के जरिए सुनाई देता है। तो चले प्रोग्राम में रोथडाम शहर का रहने वाला हारोल्ड का खास मांगे हुए गाना बस पेश किया जा रहा है। झुक गया आसमान फिल्म का नाम, मोहम्मद रफी की आवाज में।

गाना जो अभी प्रोग्राम में पेश की गई मोहम्मद रफी की आवाज में, झुक गया आसमान फिल्म का नाम था गाना, अभी आपने सुना। और रोटरडम शहर का रहने वाला हारोल्ड का खास मांगी हुई गाना अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई। हारोल्ड शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

एक गाना और प्रोग्राम में पेश होगा जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड शहर का रहने वाला विजय, विजय का मांगे हुए गाना मुख्य इसकी आवाज में बस पेश किया जा रहा है।

माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस पेश की गई। उत्तराखंड शहर का रहने वाला विजय का खास मांगे हुए गाना अभी आपने सुना माइटी मुकेश की आवाज में जो पेश की गई। आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में एक आखिरी और आखिरी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश किया जाएगी। पुरानी फिल्म सही उसी फिल्म का गाना आप सुनते ही रहना मुकेश महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में। आमसफोर्ट शहर का रहने वाला मन्ना सुखाई का मांगे हुए गाना बस पेश किया जा रहा है।

0: पुरानी फिल्म सहित उसी फिल्म का गाना पेश की गई मुकेश महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में गाना भी आपने सुना। और आमसफोर्ट शहर का रहने वाला मन्ना सुखाएगा मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। यहाँ तक पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश की गई और यहाँ तक सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। सभी को शुक्रिया धन्यवाद कहा जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से कि आप सभी जोर तोड़ से पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में हिस्सा लिया, गाना मांग किया और इसी तरह से इस प्रोग्राम को सजाए है। घड़ी की ओर देखा जाए 11:03 वैठित हो चुका है। चले प्रोग्राम में रिक्लाम की ओर, न्यूज मौसमी समाचार और फरकीर से इन्फॉर्मेशन की ओर हम आपको ले चलते हैं। उसके बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलते हैं।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आज का ये प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में सोनू निगम और अलका की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो भी थे कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले अलका एन शान की आवाज में द फिल्म खुशी ये गाना पेश किया जा रहा है। तेरे बिना

0: पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना।
1: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

हमारे अपने की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है।

में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार नीरज श्रीधर एंड सुनिधि चौहान के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो एसबीएस के जरिए। ये खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की आवाज में। गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में शान और सुनिधि चौहान होगा प्रोग्राम में।

और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले कुमार सानू जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

तानू जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आश्रो मीठे गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। अतीफ असलम की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

और रेडियो वेस भी इसके जरिए गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे की गाना अतीफ असलम की आवाज में आपने सुना और बेहद पसंद किया है। विनोद राठौर एंड साधना सरगम प्रोग्राम भी है।

अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में गाना सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

5 minuten bij dit Hoochuka hè. 5 minuten over 1 studio tijd Hoochuka hè. बारिश का मौसम है, भीजा भीजा सा मौसम है और रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। यहां से ये प्रोग्राम में कुछ लोकल नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएंगे, तो जरूर सुनते ही रहना तकरीबन 2 बजे तक, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएंगे। सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है कि आज शाम में 6 बजे प्रोग्राम में मृत्यु समाचार यानी कि दुख की खबर आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी। आज शाम में 6 बजे प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। तो चले यहां से प्रोग्राम में लोकल गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं। पहला

खास गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए, आप सभी सुनने वालों की सेवा में, हसरत है बहुत मगर 12 मिनट ओवर इन स्टूडियो टाइट, चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर। तुम अगर साथ देने का वादा करो, रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, दोपहर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है

0: वाला मशहूर गाने वाला विम दमड़ी की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों एक बार फिर से आपको खबर किया जा रहा है आज शाम में 6 का वक्त प्रोग्राम में मृत्यु समाचार दुख की खबर आप जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। अभी स्टूडियो की ओर तार किया लाइट्स एंड डम शहर से भाई राम ने तार किया और भाई राम ढेर सा कॉम्प्लीमेंट्स दिया है। प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं, सुबह से हमारा प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं भाई राम, शुक्रिया धन्यवाद आपकी तार के लिए। कुछ बातें हुए हैं, कुछ हंसी मसाक भी होते रहते हैं तार पर, बस आपकी तार के लिए लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद। चलिए गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और भाई राम लाइट्स एंड डम शहर का रहने वाला जो है ये गाना छोटी रूप में गा कर तार पर सुनाए है।
1: मुश्किल है,
0: ओरिजिनल में फिल्म महल का गीत है लता जी की आवाज में, लेकिन आज की प्रोग्राम में सैयद अली की आवाज में लोकल गाने का खास प्रोग्राम में बस हम सुनाते हैं।

मुश्किल है बहुत मुश्किल। पुरानी फिल्म महल का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई और जनरल लता जी की आवाज में ये गाना लाया गया है फिल्म महल में। अब की बार आज की लोकल गाने के खास प्रोग्राम में हमने आपको सुनाए सैयद अली की आवाज में ये खास गाना। आसरा उम्मीद है लाइटसन दम शहर का रहने वाला भाई राम को ये गाना काफी पसंद आया जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। 4:04 1:30 स्टूडियो टाइट हो चुका है। चटनी रिवाइवल प्रोग्राम में

निजाम की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में मिका सुखू की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, गुम

अख में आप हर 21वां भी बस पेश किया जा रहा है। चलिए प्रोग्राम में सागर मलिक की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो पेश किया जा रहा है

मलिक की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए एक आखिरी लोकल गीत आज के प्रोग्राम में बस पेश किया जा रहा है, उसके बाद प्रोग्राम में खबरें आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। उमर के आवाज में ये गाना आखिरी लोकल गीत पेश किया जा रहा है, उसके बाद हम आपको ले चलेंगे रिक्लाम न्यूज मौसमी समाचार और फरकियर्स इन्फॉर्मेशन की ओर।

उदित नारायण की आवाज में ये गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

सुनने वालों इसी गाना के साथ हमें इजाजत हो रहा है। डीजे ग्लैन स्टूडियो में आ गए हैं हंगामा करने के लिए। उनका प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। 3 बजे से बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम पेश किया जाएगी और बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम के बाद मृत्यु समाचार और 3 शोक समाचार आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। तो अभी 6 बजे एक बार फिर से मैं आप सभी सुनने वालों से मिलूंगा मृत्यु समाचार और शोक समाचार लेकर।

किशोर कुमार के आवाज में अभी आप सुन रहे थे यो प्री नंबर हमारा हिस्सा की प्रोग्राम से। मैं हूँ आपका खिदमतगुजार ग्लेन, सुनते रहना हमारा हिस्सा की प्रोग्राम यहाँ से ओवर योर फेवरेट बॉलीवुड रेडियो स्टेशन वन एंड ओनली ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS।

नजर के सामने जिगर के पास, अनुराधा पौडवाल साथ में, कुमार सानू के पास में, अभी आप सुनते

अनुराधा पौडवाल साथ में यशुदास के वास में, अभी आप सुनते पंकज उदास के वास में।

पंकज उदास के वास में अभी आप सुन रहे थे कि सर्दी हो या गर्मी हो, फिर भी हर मौसम पीने का मौसम। सुनते रहिए ना प्रोग्राम से कमर्शियल्स, न्यूज, फरकेस फमासी और उसके बाद में बैठक गाना, बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS।

0: 3:05 गुजर रहा है, 3:05। बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम सुनते रहना यहाँ से, वो भी हर रविवार को शाम में, हर रविवार को शाम में 3 से 6 बजे तक सुनते रहना बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम। आज की बैठक गाना प्रोग्राम से दिया ओपनिंग नंबर सुनते रहना।
1: चढ़ती है जवानी तो हो जाता है भूल।

लाइव के जरिए बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ओवर रेडियो SBS। Wil 32-62-66-11 Studio Qatar Tarka number Par mai se isti har Ya to Mirchu samachar ke liye Lene ki har ek kaam ke liye Wil 32 65-65-60 Wil

0: राजेश गिना के वास में भी आप सुनते हैं। रविंदर भोला सिंह के वास में सुनते रहना गिरधारिस्त्रात फ्लोइतुन फ्लोइतुर वैद से
1: आदमी घर में बोलाइए
0: राजन राजन गिरधारी का पसंद सुनते रहना।

दे दो पैसा हमार। क्रिस राम खिलाओ और साथियों के पास में सोलो सोलो से सुनीता की पसंद सुनते रहना।

हाशनी, हाशनी के वास में भी आप सुनते सुरीनाम, सुरीनाम परमारिबो, बलेंगदा होगस्त्रात से राम महेश साथ में खिसला की पसंद भी आप सुनते

बार बार बगिया में कोयल न बोले, उस्ताद के उस्ताद रामदेव चैतु के पास में भी आप सुने थे एंटोव से हैंक महावीर का पसंद।

बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम हर रविवार को शाम में 3 से 6 बजे तक सुनते रहना ओवर ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो।

शिवम शिवम राजाराम के वास में भी आप सुनते ऐसे मत भूलना ठीक छह कवक सुनते रहना प्रोग्राम से मृत्यु समाचार।

भूमि गिरे उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। ओ चलो देखन चली, चलो देखन चली री बाग में दशरथ।

के हो प्रीतम प्यारे तू कहाँ बसत है दीदी संजना के वास में भी आप सुन रहे थे रतदाम से सीला की बसंत भी आप सुन रहे थे

0: तू कहां से लैले रे पतोहिया। रविंद्र सिंह शिवनाथ के वास में भी आप सुन रहे थे, विशाल हीरा के वास में।
1: बदले ना ईमान तेरे लगे पतियन तोर मीठा, पर सच छिपे ना छिपा।
0: हरमलन से शैलेश रामदीन।

0: सज्जन रेखा के वास में आपकी बार देन हाउस से बेया बेया रमोतार की पसंद
1: गलिया

0: कैसे जी रहा तू ऐसन मरद वारे।
1: सुजल सुजल के वास में
0: तू ऐसन मरद
1: रतदाम से। शांता शांता कल्लो की पसंद सुनते रहे।

0: आहिस्ता आहिस्ता आज की बैठक गाना प्रोग्राम समाप्त होने पर आते हैं। ऐसे मत भूलना, ठीक छे कवक सुनते रहना प्रोग्राम से मृत्यु समाचार।
1: हमें रात भर सूते ना देवे, हमें रात भर
0: हमें रात भर सूते ना देवे। कनाक से हिसला हिसला यंग की पसंद सुन रही ना।

0: सूरज छिपे अदरी बदरी।
1: रामदेव चैतु के आवाज में सुनते रहना।
0: आए पानी के बूंद पतंग छिपे, मीन छिपे ही छा जल पाए, भोर भये पर चोर छिपे, मोर छिपे फागुन ऋतु आए, सौ घूंघट के पट ओठ छिपे, पर चंचल नारी छिपे न छिपाए।
1: उर्दन, उर्दन से डिंपल की पसंद सुनते रहना।

समाप्त होने पर आया। आज की बैठक गाना प्रोग्राम यहाँ से आने वाले रविवार को शाम में सुनते रहना फिर से एक बार बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम। अभी सुनते रहना प्रोग्राम से कमर्शियल्स, न्यूज फॉर के सी फार्मेसी और उसके बाद में प्रोग्राम से मृत्यु समाचार। मैं था आपका खिदमतगुजार ग्लेन। हमारी तरफ से आप सब सभी को एक शुभ शाम कहा जा रहा है। मिलेंगे फिर आने वाले रविवार को शाम में।

सुन वालों घड़ी की ओर देखा जाए 6:00 प्रोग्राम में 1 मिनट व्यतीत हो चुका है। यहाँ से रेडियो SBS के जरिए प्रोग्राम में मृत्यु समाचार यानी कि दुख की खबर पुकारा जा रहा है। आप लोगों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है गौर से सुनने के लिए। आए भी अकेला जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी है और 2 दिन का मेला। कोई चल दिया है अकेला, कोई रह गया है अकेला, ऐ दुनिया की मालिक तूने कौन सा खेल खेला। प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए अर्थात गौर फरमाइए। यूट्रेक्ट शहर से समस्त दुखित परिवार रॉबी हुब्बा और समस्त लड़कन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। दोंदडाख 3 सितंबर 61 साल 61 साल की आयु में रॉबी हुब्बा के भाई कुसमा महादेव मिसिर के बरकू मुकेश और ईश्वर हुब्बा के दादा सांधिया बद्री सिंह के ददुआ ससुर मोहनी हुब्बा के आजाम स्वर्गीय पिता श्री जय नारायण हुब्बा जिन्हें लोग जय के नाम से पहचानते थे और स्वर्गीय माता श्री रामदेई कन्हाई हुब्बा के बेटा। यूट्रेक्ट शहर का रहने वाला सुभाष चंद्र दत्त हुब्बा की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सोमवार मोर्ख मानदाह 14 सितंबर 14 सितंबर दिन में 12 के वक्त ओम 12 uur क्रेमेटोरियम डालवैक फ्लोरिडा ड्राइव नंबर 7 यूट्रेक्ट ओवरवेक्ट में दाह क्रिया किया जाएगा। सुनने वालों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है खबर को और जान पहचान वालों तक पहुंचा देने के लिए। रेडियो SBS इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख के दिनों में शोक सहानुभूति पेश कर रहे हैं और ऊपर वाला से यही प्रार्थना किया जा रहा है इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख के दिनों में पूरा पूरा शक्ति देने के लिए। रेडियो SBS आप लोगों के दुख में पूरा और पूरा शामिल है। इसी तरह से रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम में मृत्यु समाचार दुख की खबर जो पेश की है।

सुन वालों, यहां से प्रोग्राम में तीन शोक समाचार आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

बृहस्पतिवार 10 तारीख सितंबर 61 साल 61 साल की आयु में यूट्रेक्ट शहर का रहने वाला सुभाष चंद्र दत्त हुब्बा की मृत्यु हो गई है। यूट्रेक्ट शहर से भाई रॉबी हुब्बा अपने भाई छुटकी कुसमा महादेव मिसिर अपने बड़कू के याद में और भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ये गाना बस पेश कर रहे हैं।

तारीख सितंबर 61 साल 61 साल की आयु में यूट्रेक्ट शहर का रहने वाला सुभाष चंद्र दत्त हुब्बा की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सोमवार 14 तारीख सितंबर दिन में 12 के वक्त ओम 12 uur क्रेमेटोरियम दालवैक फ्लोरिडा ड्रेव नंबर 7 यूट्रेक्ट ओवरवेक्ट में दा क्रिया किया जाएगा। यूट्रेक्ट शहर से भाई रॉबी हुब्बा अपने भाई छुटकी कुसमा महादेव मिसिर अपने बरकू के याद में और भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ये गाना बस पेश कर रहे थे। गत बृहस्पतिवार 10 तारीख सितंबर 61 साल 61 साल की आयु में यूट्रेक्ट शहर का रहने वाला सुभाष चंद्र दत्त हुब्बा की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सोमवार 14 तारीख सितंबर दिन में 12 के वक्त क्रेमेटोरियम दालवैक फ्लोरिडा ड्राइव 7 यूट्रेक्ट ओवरवेक्ट में दाह क्रिया किया जाएगा। यूट्रेक्ट से मुकेश और ईश्वर हुब्बा अपने दादा की याद में और भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए खास सुंदर भजन बस पेश कर रहे हैं।

Donderdag 10 september. Ik zit zaal 61, zaal Kia Jumim. Utrecht Shahar ka rehne wala Subhas Chandar Dutt Hubba ka mrityu ho gaye hai. Artikel somwar 14 tarikh september din mein 12 ke waqt. Crematorium Daalwijk, Florida Dreef Saad, Utrecht overvecht mee da kriya kiya jayega. Utrecht Shahar se Mukesh aur Ishwar Hubba अपने दादा की याद में और भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ये सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश कर रहे थे। प्रोग्राम में एक आखिरी शोक समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए। दोंदडाग 3 सितंबर 61 साल 61 साल की आयु में यूट्रेक्ट शहर का रहने वाला सुभाष चंद्र दत्त हुब्बा की मृत्यु हो गई है। आर्टिकल सोमवार 14 तारीख सितंबर दिन में 12 के वक्त क्रेमेटोरियम दालवैक फ्लोरिडा ड्राइव 7 यूट्रेक्ट ओवरवेक्ट में दाह क्रिया किया जाएगा। यूट्रेक्ट शहर से रॉबी हुब्बा अपने भाई कुसमा महादेव मिसिर अपने बरकू मुकेश और ईश्वर हुब्बा अपने दादा की याद में और भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ये गाना पेश कर रहे हैं।

गत बृहस्पतिवार 10 तारीख सितंबर 61 साल 61 साल की आयु में यूट्रेख्त शहर का रहने वाला सुभाष चंद्र दत्त हुब्बा का मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सोमवार 14 तारीख सितंबर मोर्ख मांडा 14 सितंबर दिन में 12 के वक्त om 12 uur crematorium Daalwijk, Florida Dreef, Saat 7, Utrecht, Overvecht mee, da Kriakia Jijgam. Utrecht शहर से रॉबी हुब्बा अपने भाई कुसमा महादेव मिसिर अपने बरकू मुकेश और ईश्वर हुब्बा अपने दादा की याद में और भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश कर रहे थे। इसी तरह से रेडियो SBS के जरिए शोक समाचार बस प्रोग्राम में पेश की गई है। एक बार फिर से रेडियो SBS इन तमाम परिवारों को इस दुख की दिनों में शोक सुहानी भूति पेश कर रहे हैं और भगवान से यही प्रार्थना किया जा रहा है इस दुखित परिवार को शक्ति देने के लिए। रेडियो SBS आप लोगों के दुख में पूरा और पूरा शामिल है। इसी तरह से रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम में मृत्यु समाचार और 3 शोक समाचार जो

सुनने वालों घड़ी की ओर देखा जाए, एक मिनट बाकी है 6:30 में। मैं आप सभी सुनने वालों से इशारत और आज्ञा चाहूंगा और प्रोग्राम आगे तक आप जरूर सुनते ही रहना, और वो भी आरजे आंशलिक के जरिए। मैं आप सभी सुनने वालों से मिलूंगा कल सुबह ठीक 7 बजे। तब तक के लिए हमें इजाजत और आज्ञा दीजिए। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ रात्रि बस पेश किया जा रहा है।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आर जे अंशली करमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशली करमलाल, दी फा हार्ट वेलकम हेट इन द प्रोग्राम गीतों के लहर। वेल रिएक्शन कैन इट ऑल टाइम सर्फ माना द वेबसाइट www.radiosbs.nl।

मेरा दिल गाए जा जुजु जुबी जुबी जुबी वास आउट द फिल्म मरते दम तक. एंड देन हाउ फर्दर मैट आउट द फिल्म जवाने जाने मन. मेरे बाबूला मेरे बाबूला, gezongen door Harshdeep Kaur en Akhil Sachdev, is het volgend liedje in het programma Geetonkilleher.

तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, वॉज आउट द फिल्म बॉम्बे। एंड आउट द फिल्म दिल ही दिल में कम्स गसोंगा डोर हरिहरन एंड स्वर्णलता। इम्तिहान हम प्यार का देखे, राह देखे, क्या है नतीजा, डोला डोला मन डोला।

तू जहां भी जाएगी तेरे पीछे पीछे मैं आऊंगा। आई लव यू माई एंजल वॉज द फिल्म प्यारे मोहन एंड इस गजोंग दूर कुनाल गांजावाला। Het volgende liedje via Radio SBS in het programma Gitoon Kelleher is gezongen door Arijit Singh. Uit de film Holiday komt Aaj Dil Shayarana Lagta Hai.

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.